0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं।

पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है कि सबकी गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन है और उसके बाद वे मृतकों के पास जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित हैं जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, उनका नाम तक भुला दिया जाएगा। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, यह सब मिट गया है। पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में अब उनका कोई भाग नहीं। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं शब्दों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। नवा अध्याय एक प्रकार से आठवें अध्याय के भाव को ही जारी रखता है। यह हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन के लिए बाध्य करता है, बारंबार याद दिलाता है कि अंत में सभी मनुष्यों की गति एक जैसी होती है, चाहे वे धर्मी हो या विधर्मी। श्रोताओं, ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्षण के लिए उपदेशक यह भूल गया था कि ईश्वर के कार्य उसके अदृश्य स्वरूप को, उनकी शाश्वत शक्तिमता को विश्वास की आंखों से देखा जाना जरूरी है। नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों में उपदेशक सुलेमान मनुष्यों की मूर्खता पर विचार करता है और इस विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि इस धरती पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सारा अस्तित्व, उसकी चेतना जीवन के साथ ही खत्म हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका कुछ भी नहीं रह जाता, केवल उसके द्वारा बोले गए प्यार के शब्द, उसके द्वारा संपादित काम रह जाते हैं। यहाँ एक बार फिर उपदेशक ने मनुष्यों को चेतावनी देनी चाहिए है और वह यह कि जब तक जीवन है तब तक हम भले कार्यों में लगें, जरूरतमंद की मदद करें तथा दुष्टता और बुराई से दूर रहें। केवल इस जीवन के बारे में नहीं अपितु इस जीवन के परे सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें, जो हमें अन्यों की सहायता से दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना से मिल सकता है।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों का पाठ कर इन पर तनिक विचार करें। इन पदों में सुलेमान हम सबसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से आग्रह करता है कि वे जीवन और जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने, हर पल उसी की महिमा का गुणगान करें। ये पद इस प्रकार है, जाओ आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहकर अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओ, उपदेशक के उक्त पदों में निहित विश्लेषण कुछ विनोदपूर्ण प्रतीत हो सकता है। जिंदगी पूरी तरह से बेकार है और हमारी एक जैसी मौत किस्मत और नियति इसे साबित कर देती है। अस्तु उसका कहना है कि अब तक जो कुछ भी उसने कहा है उसे भूल जाओ और जीवन का आनंद उठाओ। वस्तुतः यह निराश पुरुषों और महिलाओं को दी गई छोटी सी उम्मीद है। उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें पद पर यदि गौर किया जाए तो इसमें ईश्वर की महान शक्ति पर जोर दिया गया है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो, जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है। यहां हमें भाग्य या नियति और इच्छा दोनों का एहसास होता है। संभवतः इन शब्दों से उपदेशक यह कहना चाहता था कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने तुम्हारे कार्यों को पहले ही से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि यदि ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करते तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते। फिर कहता है, ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। श्रोताओ, सुलेमान इस बात

है कि अपने व्यर्थ जीवन को व्यक्ति सुखी बनाए, उसे बेहतर बनाने का प्रयास करे और उसे अर्थ प्रदान करे। कहता है कि अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगो। श्रोताओं, वैवाहिक जीवन की यही मांग होती है कि पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो, सम्मान हो, तब ही उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। एफेसियों को प्रेषित पत्र के 5वें अध्याय के 25वें पद में संत पॉल लिखते हैं, पतियों, अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है। उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया। श्रोताओं, जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति की सारी मेहनत में हिम्मत का मिलना भी शामिल होता है। एक प्रकार से उपदेशक जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच जीवन जीने के लिए हम सबको प्रोत्साहन प्रदान करता है। 9वें अध्याय के 10वें पद में उपदेशक अपने परामर्श को जारी रखते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओं, उपदेशक के इस नजरिए को हम प्रभु ईश्वर के प्रति अपनी अभी की सेवा में अपना सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान ने कल का काम करके ईश्वर की सेवा नहीं की। श्रोताओं, आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय होने के लिए मनुष्य का सृजन नहीं किया गया था। मनुष्य की सृष्टि इसलिए नहीं की गई थी कि वह आलसी रहे, न ही उसे आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय होने के लिए सब प्राणियों में श्रेष्ठ चुना गया था, अपितु उसे ईश्वर की कृपा से पवित्र किया गया था, ताकि वह इस जीवन में अपने दायित्वों का भली भांति अनुपालन करे और ईश्वर के प्रति दिन ब दिन धन्यवाद ज्ञापित किया करे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें बुधवार को कस्तेल गंदोल्फो से वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा को समर्पित एक पहाड़ी तीर्थालय गए। बुधवार सुबह को पोप ने वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा के तीर्थालय का आकस्मिक दौरा किया। माउंट ओतेरे की चट्टान में बना यह तीर्थालय मध्य इटली के लाज़ो एवं अब्रुत्सो इलाकों की सीमा पर है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार संत पापा ने तीर्थालय के अंदर पौत्र त्रित्वा की तस्वीर के सामने प्रार्थना की और वहां भक्तों एवं धर्म संघ के समुदाय का अभिवादन किया। वाले पियत्रा की अपनी यात्रा के बाद पोप लियो 14वें सुबिया को गए, जहां उन्होंने संत बेनेडिक्ट के मठ का दौरा किया। मठ परिसर की यात्रा के दौरान वे 13वीं सदी के संत फ्रांसिस की तस्वीर के सामने मौन प्रार्थना की और संत बेनेडिक्ट की पौत्र गुफा में परंपरा के अनुसार संत की प्रतिमा के घुटने को चूमा। फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ हे हमारे पिता की प्रार्थना का पाठ किया। मठ और गुफा लगभग 1000 सालों से बेनेडिक्टाइन आध्यात्मिकता की सबसे महत्वपूर्ण जगह

में से एक माना जाता है। यह गुफा वह जगह है जहां 6वीं सदी की शुरुआत में नोरचा के युवा संत बेनेडिक्ट एक साधु की तरह रहते थे। इसी जंगल की गुफा में अकेले रहते समय ही संत बेनेडिक्ट अपने करिश्मे एवं आध्यात्मिकता को परिपक्व किया, जिससे उन्हें प्रथम मठवासी समुदाय बनाने और पश्चिमी मठवाद का बीज बोने का मौका मिला। बेनेडिक्टाइन समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद पोप लियो संत स्कोलास्टिका के मठ गए, जहां उन्होंने एकांत मठवास एवं कॉन्वेंट का दौरा किया। वहां के बाद पोप लियो कस्तिल गंदोल्फो लौटे। इससे पहले पोप लियो ने 20 जुलाई को मोंते कैसिनो का दौरा किया था, जहां उन्होंने दुनिया भर में शांति के लिए प्रार्थना की थी। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोलिन ने देश एवं दुनिया तथा गजा की भलाई के लिए ईरान के साथ पुनः बातचीत शुरू करने और समझौता की उम्मीद जताई। किताब के प्रस्तुतिकरण के एक मौके पर उन्होंने कलीसिया की शांति के मजबूत संदेश के महत्व और बातचीत, कूटनीति और मेल मिलाप के द्वारा मतभेदों को दूर करने में उसकी भूमिका को भी दोहराया। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, जबकि शांति की कोई उम्मीद नहीं है। इन शब्दों के साथ वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पेत्रो परोली ने अंतोनियो प्रेसियोसी की किताब पास्का की शांति पोप जॉन 23वें से पोप लियो 14वें तक 2033 की जयंती की ओर के प्रस्तुतिकरण के मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। यह प्रस्तुतिकरण बुधवार दोपहर 22 जुलाई को वैटिकन के लिए इतालवी राजदूतावास पलाजो बोरोमियो में हुआ था। यूक्रेन में युद्ध के नवीनतम घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कार्डिनल परोली ने कहा कि वैटिकन विदेश सचिव महाधमदश पॉल रिचर्ड गलाघर के अनुसार, जो अभी अभी युद्धग्रस्त देश से लौटे हैं, रविवार और सोमवार के बीच की रात ने सबसे भारी हमलों में से एक देखी। फिर ईरान की ओर रुख करते हुए कार्डिनल ने गौर किया कि समझौता ज्ञापन अब लागू नहीं है और उभरती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे खत्म होगा। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं, शायद कोई नहीं। उन्होंने इस उम्मीद को याद करते हुए कहा कि जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था वह प्रभावी साबित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश और दुनिया की भलाई के लिए एक स्थायी समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर शुरू करनी होगी, क्योंकि ये स्थितियाँ शांति को खतरे में डालती हैं। कार्डिनल परोली ने अब्दरहीम फकीर की मौत के बाद इतालवी शहर बोलोनिया में हुई हिंसा पर भी टिप्पणी की, जिससे पुलिस ने जमीन पर गिरा दिया था, और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मुझे बस उम्मीद है कि सच सामने आएगा और इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक जांच शांत माहौल में और निश्चय ही बिना हिंसा के की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हिंसा कभी लाभदायक नहीं होती। अंत में कार्डिनल परोलिन ने बातचीत और शांति को बढ़ावा देने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, कलीसिया ऐसे शब्द बोलना जारी रखती है जो सेवा के हैं। उन्होंने बीज बोने वाले दृष्टांत को याद किया और उम्मीद जताई कि ये शब्द फल लाएंगे। उन्होंने अंत में कहा, कलीसिया इस संदेश को दोहराते नहीं थकती, नतीजे चाहे जो भी हों, इन मूल्यों पर जोर देते रहना सही है, जो शांतिपूर्ण एवं निर्माणात्मक सहअस्तित्व के लिए जरूरी है। कार्डिनल ने किताब की ख्रिस्ती एकता पहलू पर भी प्रकाश डाला और उम्मीद जताई कि 2033 की असाधारण जयंती की ओर यात्रा ख्रिस्ती एकता को और अधिक बढ़ावा दे सकेगी और बातचीत, कूटनीति एवं मेल मिलाप के जरिए मतभेदों को दूर करने की कोशिश को मजबूत कर सकेगी। भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन CBCI ने नई दिल्ली में शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। एक बयान में CBCI ने कहा कि देश के युवा, जो देश के भविष्य हैं, शिक्षा प्रणाली में अधिक जवाबदेही और सुधारों की जायज मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अधिक बल प्रयोग को धर्मदक्षों ने हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर दिल तोड़ने वाला हमला बताया। उन्होंने कार्रवाई के दौरान पीड़ित सभी छात्रों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि वे पारदर्शी, जवाबदेही और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की उनकी कोशिश में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बयान में धर्मदर्शों ने कहा, हम आपका दर्द समझते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं
और एक पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण शिक्षा पद्धति के लिए आपकी सही आवाज को दोहराते हैं। भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने जाने माने शिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लिए भी अपना ठोस समर्थन जताया है, जो सही सुधारों की मांग को लेकर लंबे समय से भूख हड़ताल पर हैं। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत को लेकर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों से अपील की कि वे उनकी मांगों पर दबाव डालने के बजाय दया और समझदारी से जवाब दें। संयम और रचनात्मक जुड़ाव की अपील करते हुए CBCI ने सरकार से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सभी संबंधित हितधारकों के साथ सही बातचीत शुरू करने की अपील की है। इसने अधिकारियों से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने की अपील की है, जिसमें शांति से एकत्रित होने और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आज़ादी शामिल है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मनुष्य सभी स्थितियों और अवस्थाओं में मानव जीवन के सम्मान और उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहें तथा जीवन को ईश्वर का वरदान माने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है।

पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में यही बुराई है कि सबकी गति एक जैसी है। मनुष्यों का हृदय दुष्टता से भरा है। जब तक वे जीवित रहते हैं उनके हृदय में पागलपन है और उसके बाद वे मृतकों के पास जाते हैं। जब तक जीवन है तब तक आशा है। मुर्दा सिंह से जिंदा कुत्ता अच्छा है। जो जीवित हैं जानते हैं कि उन्हें मरना होगा, किंतु मृतक कुछ नहीं जानते। उन्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा, उनका नाम तक भुला दिया जाएगा। उनका प्यार, उनका बैर और उनकी ईर्ष्या, यह सब मिट गया है। पृथ्वी के सारे कार्यकलाप में अब उनका कोई भाग नहीं। श्रोताओ, ये थे उपदेशक ग्रंथ के नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों के शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं शब्दों की व्याख्या कर हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। नवा अध्याय एक प्रकार से आठवें अध्याय के भाव को ही जारी रखता है। यह हमें जीवन के अर्थ पर चिंतन के लिए बाध्य करता है, बारंबार याद दिलाता है कि अंत में सभी मनुष्यों की गति एक जैसी होती है, चाहे वे धर्मी हो या विधर्मी। श्रोताओ, ऐसा प्रतीत होता है कि एक क्षण के लिए उपदेशक यह भूल गया था कि ईश्वर के कार्य उसके अदृश्य स्वरूप को, उनकी शाश्वत शक्तिमता को विश्वास की आंखों से देखा जाना जरूरी है। नवे अध्याय के तीसरे और चौथे पदों में उपदेशक सुलेमान मनुष्यों की मूर्खता पर विचार करता है और इस विश्वास की अभिव्यक्ति करता है कि इस धरती पर मनुष्य का संपूर्ण जीवन, उसका सारा अस्तित्व, उसकी चेतना जीवन के साथ ही खत्म हो जाती है। मृत्यु के बाद उसका कुछ भी नहीं रह जाता, केवल उसके द्वारा बोले गए प्यार के शब्द, उसके द्वारा संपादित काम रह जाते हैं। यहाँ एक बार फिर उपदेशक ने मनुष्यों को चेतावनी देनी चाहिए है और वह यह कि जब तक जीवन है तब तक हम भले कार्यों में लगें, जरूरतमंद की मदद करें तथा दुष्टता और बुराई से दूर रहें। केवल इस जीवन के बारे में नहीं, अपितु इस जीवन के परे सोचें, अनंत जीवन के बारे में सोचें, जो हमें अन्यों की सहायता से, दूसरों के प्रति प्रेम और सद्भावना से मिल सकता है।

और अब आइए उपदेशक ग्रंथ के 9वें अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों का पाठ कर इन पर तनिक विचार करें। इन पदों में सुलेमान हम सबसे और युग युगांतर तक के मनुष्यों से आग्रह करता है कि वे जीवन और जीवन के आनंद को ईश्वर का वरदान माने, हर पल उसी की महिमा का गुणगान करें। ये पद इस प्रकार हैं: जाओ आनंद के साथ अपनी रोटी खाओ और प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहकर अंगूरी पियो, क्योंकि ईश्वर उसके लिए अपनी स्वीकृति दे चुका है। तुम हमेशा उज्जवल कपड़े पहनो और अपने सिर पर तेल लगाओ। ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारे हाथ जो भी काम करे उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओं, उपदेशक के उक्त पदों में निहित विश्लेषण कुछ विनोदपूर्ण प्रतीत हो सकता है। जिंदगी पूरी तरह से बेकार है और हमारी एक जैसी मौत, किस्मत और नियति इसे साबित कर देती है। अस्तु उसका कहना है कि अब तक जो कुछ भी उसने कहा है उसे भूल जाओ और जीवन का आनंद उठाओ। वस्तुतः यह निराश पुरुषों और महिलाओं को दी गई छोटी सी उम्मीद है। उपदेशक ग्रंथ के 7वें अध्याय के 13वें पद पर यदि गौर किया जाए तो इसमें ईश्वर की महान शक्ति पर जोर दिया गया है। उपदेशक कहता है, ईश्वर के कार्यों पर विचार करो। जिसे ईश्वर ने टेढ़ा कर दिया उसे कौन सीधा कर सकता है? यहां हमें भाग्य या नियति और इच्छा दोनों का एहसास होता है। संभवतः इन शब्दों से उपदेशक यह कहना चाहता था कि मुझे उम्मीद है कि ईश्वर ने तुम्हारे कार्यों को पहले ही से स्वीकृति दे दी है, क्योंकि यदि ईश्वर उसे स्वीकार नहीं करते तो तुम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाते। फिर कहता है, ईश्वर ने तुम्हें पृथ्वी पर जो व्यर्थ जीवन दिया है उसमें अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगते रहो। यह जीवन में और पृथ्वी पर तुम्हारे परिश्रम में तुम्हारा भाग्य है। श्रोताओं, सुलेमान इस बात से भलीभांति परिचित था कि इस संसार में उम्दा भोजन, मदिरा पान, उत्तम पहनावा और आरामदायक और साथ ही प्यार करने वाली पत्नी सुख के साधन होते हैं। वह खुद इस जीवन का सुख भोग चुका था, इसलिए अपने सुनने वालों को भी यही परामर्श दे रहा था कि जो जीवन मिला है उसी में सुखी रहो और आनंद मनाओ। उज्जवल कपड़े और सिर पर तेल लगाने की बात उसने इसलिए की कि मध्य पूर्व के देशों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और गर्म जलवायु में उज्जवल कपड़े और सिर पर तेल लगाने से बहुत आराम मिलता है। सुलेमान का परामर्श है कि अपने व्यर्थ जीवन को व्यक्ति सुखी बनाए, उसे बेहतर बनाने का प्रयास करे और उसे अर्थ प्रदान करे। कहता है कि अपनी प्रिय पत्नी के साथ जीवन का आनंद भोगो। श्रोताओं, वैवाहिक जीवन की यही मांग होती है कि पति पत्नी के बीच प्यार हो, विश्वास हो, सम्मान हो, तब ही उनका वैवाहिक जीवन सुखी हो सकता है। एफेसियों को प्रेषित पत्र के 5वें अध्याय के 25वें पद में संत पॉल लिखते हैं, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया है, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित कर दिया। श्रोताओं, जिंदगी की जिम्मेदारियों के बीच व्यक्ति की सारी मेहनत में हिम्मत का मिलना भी शामिल होता है। एक प्रकार से उपदेशक जीवन की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के बीच जीवन जीने के लिए हम सबको प्रोत्साहन प्रदान करता है। 9वें अध्याय के 10वें पद में उपदेशक अपने परामर्श को जारी रखते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ जो भी काम करें उसे पूरी लगन के साथ करो, क्योंकि अधोलोक में जहां तुम जाने वाले हो वहां न तो काम है, न विचार, न ज्ञान और न प्रज्ञा। श्रोताओं, उपदेशक के इस नजरिए को हम प्रभु ईश्वर के प्रति अपनी अभी की सेवा में अपना सकते हैं, क्योंकि किसी भी इंसान ने कल का काम करके ईश्वर की सेवा नहीं की।
श्रोताओं, आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय होने के लिए मनुष्य का सृजन नहीं किया गया था। मनुष्य की सृष्टि इसलिए नहीं की गई थी कि वह आलसी रहे, न ही उसे आलसी, अकर्मण्य और निष्क्रिय होने के लिए सब प्राणियों में श्रेष्ठ चुना गया था, अपितु उसे ईश्वर की कृपा से पवित्र किया गया था, ताकि वह इस जीवन में अपने दायित्वों का भली भांति अनुपालन करे और ईश्वर के प्रति दिन ब दिन धन्यवाद ज्ञापित किया करे।

आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप लियो 14वें बुधवार को कस्तेल गंदोल्फो से वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा को समर्पित एक पहाड़ी तीर्थालय गए। बुधवार सुबह को पोप ने वाले पियत्रा में पौत्र त्रित्वा के तीर्थालय का आकस्मिक दौरा किया। माउंट ओतेरे की चट्टान में बना यह तीर्थालय मध्य इटली के लाज़ो एवं अब्रुत्सो इलाकों की सीमा पर है। वैटिकन प्रेस कार्यालय द्वारा जारी एक बयान अनुसार संत पापा ने तीर्थालय के अंदर पौत्र त्रित्वा की तस्वीर के सामने प्रार्थना की और वहां भक्तों एवं धर्म संघ के समुदाय का अभिवादन किया। वाले पियत्रा की अपनी यात्रा के बाद पोप लियो 14वें सुबिया को गए, जहां उन्होंने संत बेनेडिक्ट के मठ का दौरा किया। मठ परिसर की यात्रा के दौरान वे 13वीं सदी के संत फ्रांसिस की तस्वीर के सामने मौन प्रार्थना की और संत बेनेडिक्ट की पौत्र गुफा में परंपरा के अनुसार संत की प्रतिमा के घुटने को चूमा। फिर उन्होंने वहां मौजूद लोगों के साथ हे हमारे पिता की प्रार्थना का पाठ किया। मठ और गुफा लगभग 1000 सालों से बेनेडिक्टाइन आध्यात्मिकता की सबसे महत्वपूर्ण जगहों में से एक माना जाता है। यह गुफा वह जगह है जहां 6वीं सदी की शुरुआत में नोरचा के युवा संत बेनेडिक्ट एक साधु की तरह रहते थे। इसी जंगल की गुफा में अकेले रहते समय ही संत बेनेडिक्ट अपने करिश्मे एवं आध्यात्मिकता को परिपक्व किया, जिससे उन्हें प्रथम मठवासी समुदाय बनाने और पश्चिमी मठवाद का बीज बोने का मौका मिला। बेनेडिक्टाइन समुदाय के साथ दोपहर का भोजन करने के बाद पोप लियो संत स्कोलास्टिका के मठ गए, जहां उन्होंने एकांत मठवास एवं कॉन्वेंट का दौरा किया। वहां के बाद पोप लियो कस्तेल गंदोल्फो लौटे। इससे पहले पोप लियो ने 20 जुलाई को मोंते कैसिनो का दौरा किया था, जहां उन्होंने दुनिया भर में शांति के लिए प्रार्थना की थी। वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने देश एवं दुनिया तथा गजा की भलाई के लिए ईरान के साथ पुनः बातचीत शुरू करने और समझौता की उम्मीद जताई। किताब के प्रस्तुतिकरण के एक मौके पर उन्होंने कलीसिया की शांति के मजबूत संदेश के महत्व और बातचीत, कूटनीति और मेल मिलाप के द्वारा मतभेदों को दूर करने में उसकी भूमिका को भी दोहराया। दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तनाव बढ़ रहे हैं, जबकि शांति की कोई उम्मीद नहीं है। इन शब्दों के साथ वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने अंतोनियो प्रेसियोसी की किताब पास्का की शांति पोप जॉन 23वें से पोप लियो 14वें तक 2033 की जयंती की ओर के प्रस्तुतिकरण के मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया। यह प्रस्तुतिकरण बुधवार दोपहर 22 जुलाई को वैटिकन के लिए इतालवी राजदूतावास पलाज़ो बोरोमियो में हुआ था। यूक्रेन में युद्ध के नवीनतम घटनाक्रम पर टिप्पणी करते हुए कार्डिनल परोलिन ने कहा कि वैटिकन विदेश सचिव महाधर्मदोष पॉल रिचर्ड गलाघर के अनुसार जो अभी अभी युद्धग्रस्त देश से लौटे हैं, रविवार और सोमवार के बीच की रात ने सबसे भारी हमलों में से एक देखी। फिर ईरान की ओर रुख करते हुए कार्डिनल ने गौर किया कि समझौता ज्ञापन अब लागू नहीं है और उभरती स्थिति पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे खत्म होगा। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं, शायद कोई नहीं। उन्होंने इस उम्मीद को याद करते हुए कहा कि जिस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था वह प्रभावी साबित होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि देश और दुनिया की भलाई के लिए एक स्थायी समझौते पर पहुंचने के लिए बातचीत फिर शुरू करनी होगी, क्योंकि ये स्थितियाँ शांति को खतरे में डालती हैं। कार्डिनल परोलिन ने अब्दुर्रहीम फकीर की मौत के बाद इतालवी शहर बोलोनिया में हुई हिंसा पर भी टिप्पणी की, जिससे पुलिस ने जमीन पर गिरा दिया था, और उन्होंने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा, मुझे बस उम्मीद है कि सच सामने आएगा और इस बात पर जोर दिया कि आवश्यक जांच शांत माहौल में और निश्चय ही बिना हिंसा के की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हिंसा कभी लाभदायक नहीं होती। अंत में कार्डिनल परोलिन ने बातचीत और शांति को बढ़ावा देने के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, कलीसिया ऐसे शब्द बोलना जारी रखती है जो सेवा के हैं। उन्होंने बीज बोने वाले दृष्टांत को याद किया और उम्मीद जताई कि ये शब्द फल लाएंगे। उन्होंने अंत में कहा, कलीसिया इस संदेश को दोहराते नहीं थकती, नतीजे चाहे जो भी हों, इन मूल्यों पर जोर देते रहना सही है, जो शांतिपूर्ण एवं निर्माणात्मक सहअस्तित्व के लिए जरूरी है।
कार्डिनल ने किताब के खुरस्ते एकता पहलू पर भी प्रकाश डाला और उम्मीद जताई कि 2033 की असाधारण जयंती की ओर यात्रा खुरस्ते एकता को और अधिक बढ़ावा दे सकेगी और बातचीत, कूटनीति एवं मेल मिलाप के जरिए मतभेदों को दूर करने की कोशिश को मजबूत कर सकेगी। भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन CBCI ने नई दिल्ली में शांति से प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बेरहमी से लाठीचार्ज एवं आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की है। एक बयान में CBCI ने कहा कि देश के युवा, जो देश के भविष्य हैं, शिक्षा प्रणाली में अधिक जवाबदेही और सुधारों की जायज मांगों के साथ सड़कों पर उतरे हैं। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अधिक बल प्रयोग को धर्मदक्षों ने हमारे लोकतंत्र की आत्मा पर दिल तोड़ने वाला हमला बताया। उन्होंने कार्रवाई के दौरान पीड़ित सभी छात्रों के साथ अपनी एकजुटता दिखाई और कहा कि वे पारदर्शी, जवाबदेही और न्यायपूर्ण शिक्षा प्रणाली की उनकी कोशिश में उनके साथ मजबूती से खड़े हैं। बयान में धर्मदर्शों ने कहा, हम आपका दर्द समझते हैं, आपकी आवाज़ सुनते हैं और एक पारदर्शी एवं न्यायपूर्ण शिक्षा पद्धति के लिए आपकी सही आवाज को दोहराते हैं। भारतीय कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलन ने जाने माने शिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लिए भी अपना ठोस समर्थन जताया है, जो सही सुधारों की मांग को लेकर लंबे समय से भूख हड़ताल पर है। उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी सेहत को लेकर गहरी चिंता जताई और अधिकारियों से अपील की कि वे उनकी मांगों पर दबाव डालने के बजाय दया और समझदारी से जवाब दें। संयम और रचनात्मक जुड़ाव की अपील करते हुए CBCI ने सरकार से प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सभी संबंधित हितधारकों के साथ सही बातचीत शुरू करने की अपील की है। इसने अधिकारियों से नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को बनाए रखने की अपील की है, जिसमें शांति से एकत्रित होने और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की आज़ादी शामिल है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
3: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु यीशु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: कन्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं।
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया।

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है,
0: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नवियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।
1: हे प्रभु ईश्वर, कृपा कर।

मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, चीन के शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमता सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमता को 21वीं सदी में मानवता के लिए सबसे बड़ा अवसर बताया। साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि यह सबसे बड़े जोखिमों में से एक भी बन सकती है। उन्होंने सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से आग्रह किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। महासचिव ने AI का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए 3 प्राथमिकताएं रेखांकित की: विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानक तय करना और AI को पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ बनाना। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस चीन के आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन को संबोधित किया। UN प्रमुख ने सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से आग्रह किया कि AI का लाभ केवल कुछ देशों या कंपनियों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। महासचिव ने कहा कि AI का प्रशासन मुट्ठी भर देशों या कंपनियों तक सीमित नहीं रहना चाहिए और हर देश को निर्णय प्रक्रिया में बराबर स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने, साझा सुरक्षा मानक तय करने और AI को पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ बनाने पर जोर दिया। UN प्रमुख ने बड़ी AI कंपनियों से अपनी प्रणालियों के पर्यावरणीय प्रभाव की जानकारी सार्वजनिक करने और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से कामकाज संचालित करने का भी आह्वान किया।
2: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में इस महीने 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले संयम बरतने और तनाव कम करने की अपील की है। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व संयुक्त जन कार्यवाही समिति JAAC कर रही है, जिसमें व्यापारी, परिवहन कर्मी, छात्र, वकील, नागरिक समाज कार्यकर्ता और अन्य समूह शामिल हैं। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने क्षेत्रीय चुनावों से पहले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में शांति बनाए रखने की अपील की है। 27 जुलाई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जून से अब तक कथित रूप से दर्जनों लोगों की मौत हुई है। इनमें अधिकतर प्रदर्शनकारी हैं। OHCHR ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई, नागरिक समाज संगठन पर प्रतिबंध और नेताओं की गिरफ्तारी पर चिंता जताई है। UN मानवाधिकार कार्यालय ने इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह बहाल करने और मूल शिकायतों के समाधान के लिए सार्थक व समावेशी राजनीतिक संवाद का रास्ता अपनाने का आग्रह किया है।
2: संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी IOM और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR, जो एशिया प्रशांत क्षेत्रों में खतरनाक यात्राएं कर रहे संवेदनशील लोगों की तलाश व बचाव, सुरक्षित आगमन, संरक्षण एवं टिकाऊ समाधान सुनिश्चित करने के लिए सरकारों के साथ मिलकर काम करते हैं, ने बताया कि जून के अंत में म्यांमार के राखिन प्रांत से 2 नौकाएं रवाना हुई थीं। लगभग 250 लोगों को ले जा रही पहली नौका के रवाना होने के कुछ ही समय बाद उससे संपर्क टूट गया। वहीं 280 लोगों को दे जा रही दूसरी नौका ने 8 जुलाई को म्यांमार के अययार वाडी तट के पास डूबने की आशंका है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: म्यांमार के तट के पास दो नौकाएं पलटने की आशंका के बाद उन पर सवार लगभग 500 लोगों की सलामती को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है। IOM और UNHCR ने संयुक्त चेतावनी जारी करते हुए बताया कि ये नौकाएं जून के अंत में म्यांमार के राखीन प्रांत से रवाना हुई थीं। इनमें अधिकतर रोहिंग्या समुदाय के लोग थे। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टेफान दुजैरिक कह रहे हैं, इन खबरों से स्पष्ट है कि लंबे समय से जारी संघर्ष, विस्थापन और रोहिंग्या समुदायों के लिए टिकाऊ समाधान की कमी का असर कितना विनाशकारी है। म्यांमार में बढ़ता संघर्ष और बिगड़ती मानवीय स्थिति, साथ ही बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में सीमित सहायता और अवसर, लोगों को सुरक्षा की तलाश में खतरनाक समुद्री यात्राएं करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। IOM और UNHCR ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ाने, विस्थापन के कारणों से निपटने और इस घातक समुद्री मार्ग पर और मौतें होने से रोकने की अपील की है।
2: संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में बुंडी बुंगियो प्रकार के इबोला संक्रमण के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। अधिकांश नए मामले संक्रमण की उन कड़ियों से जुड़े हैं जिनका स्रोत अब तक अज्ञात है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संक्रमण कहाँ से और कैसे फैला। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: WHO ने चेतावनी दी है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC में इबोला प्रकोप राहत प्रयासों से कहीं तेजी से फैल रहा है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस ने बताया कि अब तक 2,273 मामले सामने आए हैं और 796 लोगों की मौत हुई है। ये अब तक दर्ज इबोला का तीसरा सबसे बड़ा प्रकोप बन चुका है। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस कह रहे हैं कि DRC सरकार द्वारा इबोला महामारी की घोषणा किए 2 महीने हो गए हैं। तब से ये प्रकोप तेजी से फैला है। ये अब तक का तीसरा सबसे बड़ा इबोला प्रकोप है और पिछले महीने में ये किसी भी पिछले प्रकोप से अधिक तेजी से बढ़ा है। ये थे WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडेनॉम गेब्रेसस के शब्द। WHO के अनुसार DRC में संक्रमण की कड़ियां अब भी पकड़ से बाहर हैं। वहीं पड़ोसी युगांडा में आखिरी मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ गया है, जिसके बाद प्रकोप समाप्त घोषित करने की 42 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
2: संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों SDGs के लिए $4 ट्रिलियन की वित्तीय कमी दूर करने के उद्देश्य से नए सुधारों पर सहमति जताई है। बुधवार 15 जुलाई को अपनाए गए घोषणा पत्र में उन्होंने 2030 एजेंडा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। टिकाऊ विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ज्यादातर धन घरेलू स्रोतों से आता है। आइए सुनते हैं इस पर विस्तार से।
3: इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने टिकाऊ विकास लक्ष्यों यानी SDGs के लिए $4 ट्रिलियन की वित्तीय कमी दूर करने के उद्देश्य से नए सुधारों पर सहमति जताई। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के समापन पर अपनाए गए घोषणा पत्र में सदस्य देशों ने 2030 एजेंडा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इन सुधारों में सार्वजनिक और निजी निवेश बढ़ाना, विकासशील देशों के लिए ऋण राहत के विकल्पों का विस्तार करना और भ्रष्टाचार से निपटना शामिल है। ECOSOC के अध्यक्ष लोक बहादुर थापा ने कहा कि ये परिणाम दिखाता है कि संवाद और समझौते के जरिए बहुपक्षवाद ठोस नतीजे दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि अगले 5 वर्ष SDG के वादों को पूरा करने और 2030 के बाद के भविष्य की नींव रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
2: आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे, जिसे प्रस्तुत कर रही थी अंशु शर्मा। और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।

आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा लियो 14वें ने गुरुवार को एक तार संदेश प्रेषित कर इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला के 85वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं अर्पित कर अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन दिया। तार संदेश में संत पापा लियो 14वें ने इटली के कलीसियाई और सामाजिक जीवन पर लगातार ध्यान देने के लिए राष्ट्रपति महोदय के प्रति गहन आभार व्यक्त किया। इस संदेश में राष्ट्रपति के परिवार, उनके सहयोगियों और उनके प्रिय देश इटली के लिए संत पापा लियो ने शुभकामनाओं के साथ साथ अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया। संत पापा ने संपूर्ण इटली एवं राष्ट्रपति मत्तारेला को इटली के संतों असीसी के संत फ्रांसिस और सियेना की संत कैथरीन के संरक्षण के सुपुर्द भी किया। स्मरण रहे कि संत पापा लियो 14वें ने 14 अक्टूबर 2025 को क्विरिनाले पैलेस अर्थात इटली के राष्ट्रपति भवन का दौरा किया था, जहां उन्होंने यूरोप में परिवारों के लिए बहुपक्षीयवाद और समर्थन को महत्वपूर्ण बताते हुए इटली की जन्म दर में निरंतर आती गिरावट के प्रति ध्यान आकर्षित कराया था। इस अवसर पर उन्होंने विश्व में व्याप्त युद्धों का भी जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि वे उन लोगों के चेहरों को देखें तथा उनकी पुकार सुनें जो हमारे ग्रह को तबाह करने वाले कई संघर्षों में बेरहमी से मौत और तबाही की योजना बनाने वालों की बेतुकी क्रूरता से परेशान है। अपनी ओर से राष्ट्रपति मत्तारेला ने संत पापा लियो के मानव व्यक्ति की केंद्रीयता और संवाद के प्रति समर्पण पर जोर दिया। उन्होंने संत पापा को भेजे गए संदेशों में कई मौकों पर इस समर्पण को दोहराया और उनकी सराहना की है। इनमें एक संदेश संत पापा लियो 14वें के परमाधीक्षक काल की शुरुआत की पहली सालगिरह और दूसरा पास्का महापर्व के उपलक्ष्य में भेजा गया था। यूक्रेन में अपनी 6 दिवसीय यात्रा के उपरांत वैटिकन के विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गालाघार ने वैटिकन मीडिया से बातचीत में कहा कि यूक्रेन के युद्ध पीड़ित लोग सब कुछ खोने के बावजूद अपने दुख दर्दों के बीच आशा के प्रेरक बने हुए हैं। महाधर्माधीश गालाघार ने मानवतावादी प्रयासों और शांति हेतु परम धर्मपीठ की प्रतिबद्धता की पुनरावृत्ति की और कहा कि संत पापा लियो 14वें यूक्रेन की प्रेरित यात्रा के निमंत्रण को गंभीरता से ले रहे हैं तथा जब समय और परिस्थितियां इसके लिए उपयुक्त होंगी तब वे अवश्य ऐसा करेंगे। 2014 से युद्धग्रस्त तथा 2022 से रूसी आक्रमण से त्रस्त यूक्रेन की 6 दिवसीय यात्रा के दौरान वैटिकन के विदेश सचिव महाधर्माधीश गालाघार ने यूक्रेन के कई राजनीतिक और प्रशासनिक नेताओं से मुलाकात की तथा कलीसियाई संस्थाओं की भेंट की। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बेर्दिकीव के मरियम तीर्थ में 19 जुलाई को लातीनी रीति के कैथलिक कलीसियाई गिरजाघर के जीर्णोद्धार की 35वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेना था, जो संयोग से संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की प्रेरित यात्रा की 25वीं वर्षगांठ भी है। महाधर्माध्यक्ष ने बताया कि अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने खुद लोगों की तकलीफ और थकान देखी, लेकिन साथ ही उनमें व्याप्त पुनर्निर्माण का उनका निश्चय, न्यायिक शांति के लिए उनकी गहरी चाहत और जल्द से जल्द सामान्य जीवन में लौटने की उनकी इच्छा को भी देखा। उन्होंने कहा कि उनकी यात्रा प्रेरितिक होने के साथ साथ कूटनैतिक भी थी, जिसके दौरान उन्होंने वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की तथा कई लोगों के साक्ष्य सुने। महाधर्माधीश गालाघार ने कहा कि अधिकारियों के साथ मुलाकात में उन्हें संत पापा की अपीलों और उनके शब्दों के लिए बहुत आभार मिला, जो उनके लिए साहस का स्रोत है। उन्होंने कहा कि पहले संत पापा फ्रांसिस और अब संत पापा लियो 14वें द्वारा दर्शाई गई निकटता के लिए यूक्रेन के लोग आभारी हैं और समर्थन का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि यह परम धर्म पीठ को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए अपने समर्पण को नवीकृत करने और अपने मानवतावादी कार्यों को जारी रखने के लिए साहस प्रदान करता है। भारत में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने भारत सरकार से देश के विदेशी फंडिंग कानून में प्रस्तावित बदलावों को सांसदीय समिति को भेजने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि इन बदलावों से ईसाई संगठनों के सामाजिक और लोकोपकारी कार्य प्रभावित हो सकते हैं या उन पर रोक लग सकती है।
नई दिल्ली में मौजूद यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम ने कहा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन से उन संगठनों पर सरकारी नियंत्रण और कड़ा हो जाएगा जो विदेशी अनुदान पर निर्भर हैं, और इससे ईसाई संस्थाएं बुरी तरह से प्रभावित होंगी। फोरम ने 21 जुलाई को नई दिल्ली में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू को एक ज्ञापन दिया जिसमें संसद में जारी मानसून सेशन में इस पर बहस से पहले प्रस्तावित कानून की विस्तृत संसदीय समीक्षा करने की मांग की गई है। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के उत्तर पूर्वी भारत के प्रवक्ता टोको टेकी ने 23 जुलाई को उका समाचार से कहा, मंत्री ने मुझे भरोसा दिलाया है कि वे हमारे समुदाय की चिंताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाएंगे। मोदी के मंत्रिमंडल ने 18 मार्च को फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी देते हुए कहा है कि इन बदलावों का मकसद विदेशी फंडिंग वाली कल्याणकारी गतिविधियों की निगरानी को मजबूत करना तथा पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है। वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के एक माह बाद लोगों की प्राथमिक आवश्यकताओं के बीच राहत कार्य जारी हैं। इनमें नाजरेत परिवार की मिशनरी धर्म बहनें कादीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से विस्थापित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं। आपातकालीन सहायता के साथ साथ नाजरेत परिवार की मिशनरी धर्म बहनें कादीस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से शिक्षा तक पहुंच को फिर से शुरू करना चाहती हैं, जो पुनर्निर्माण के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है। भूकंप से 400 से अधिक स्कूली इमारतों को क्षति पहुंची है, जिससे पहले से ही मुश्किल सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे हजारों बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ गई है। चुनौतियों के बावजूद धर्म बहनें इस सितंबर में काराकास में अपने स्कूल को फिर से खोलने की तैयारी कर रही हैं, जबकि देश के उत्तर पश्चिम और केंद्र में क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत की जा रही है। धर्म बहनें इस बात के प्रति दृढ़ संकल्प हैं कि आपदा प्रभावित बच्चों की शिक्षा जारी रहे। प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 24 जून 2026 को वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और केंद्रीय इलाकों में आए भूकंप में कम से कम 5,346 लोगों की जानें चली गई हैं और 16,700 लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रसंघ का अनुमान है कि मलबे के नीचे अभी भी लगभग 50,000 लोग लापता हो सकते हैं। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे खेलों के मूल्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि खेल संस्कृतियों और राष्ट्रों के बीच शांति, साक्षात्कार और संवाद के अस्त्र बने, तथा सम्मान, एकात्मता और व्यक्ति के अखंड विकास को प्रोत्साहन प्रदान करें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामयिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, चीन के शंघाई में विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता को 21वीं सदी में मानवता के लिए सबसे बड़ा अवसर बताया। साथ ही उन्होंने आगाह किया है कि यह सबसे बड़े जोखिमों में से एक भी बन सकती है। उन्होंने सरकारों और प्रौद्योगिकी कंपनियों से आग्रह किया है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का लाभ केवल कुछ देशों तक सीमित न रहे, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचे। महासचिव ने AI का लाभ सभी तक पहुंचाने के लिए 3 प्राथमिकताएं रेखांकित की: विकासशील देशों की क्षमता